देवते ने हरनाक्ष की कारवा लिखा तू नारद मुनि दे हवाले कर दिता क्या तू नाल लेगा।

अपना दुख भुल गई, सारा समा परमेश्वर का नाम जप के बताने लगी। ये जो नाम जपदी है परमेश्वर दिया कथा कहानियां सुन दी है, ओदा असर एदे गर्भ विच है, पोस्ते हो रहे है। क्योंकि कहंदे ने जो मां खावे ओदा असर बच्चे ते हुंदा है, ते जैसी मां दी बिरती होवे जहो जिहा सुने ओहो जिहा असर होण वाले बच्चे ते हुंदा है। हुण ए नाम जपदी नाम सुनदी है, उस नाम दा

विष्णु भगवान नु ए भगवान हर नाकुश बड़ा जुल्म कर रहे है, मंदिर बंद करा देते, अपना नाम जपा रहे है, दुनिया बड़ी दुखी है, असि भी दुखी है। ता भगवान ने कहा, तुसी घबराओ ना, जदू को जुल्म कर दे एक वरी वो अत जरूर चुक दे, पर हर जुल्म दा अंत है, कदी बुरा समा हमेशा रहिंदा नहीं। हर नाकश दा अंत होवेगा। सारिया ने कहा, भगवान इस तरह अंत होवेगा। ता भगवान ने कहा।

पैदा होया है वो मेरा भगत है। प्रहलाद ने अपने पिता का नाम जपना नहीं, एक घर विच लड़ाई शुरू हो जानी ते हौली हौली ऐसे घर की लड़ाई ने हरनाक्ष का नाश करा देना है ते दुनिया नू हरनाक्ष दे मरण

हर नागश ने अपनी रानी क्याद नाल सलाह करके प्रहलाद नो पढ़न वास्ते पाठशाला भेजिया।

जाए, प्रहलाद बुलाए वेद ताए। संडे मरके ने जदु शिकायत की थी, ऐ राजन तेरा अपना लड़का तेरा नाम नहीं जपदा, ताओ से वक्त

ना नाम जपना छड़िया ता हर नाकुश नू होर गुस्सा चढ़िया फिर समझाया एक वरी तू राम नाम कहना बंद कर मेरा कहना मान ले तेनू मैं छड़ दिया गया।

प्रहलाद किनारे दे लग गया। हरनागश नू पता लगा कि मेरा लड़का प्रहलाद डुबिया नहीं। समझ ना आई हाले भी कि जिदी रखिया परमेश्वर करे उन्हू कौन मार सकता है। पर फिर प्रहलाद नू बुला लिया ते गुस्से नाल कहा, तू राम नाम जपना बंद कर, मेरा नाम जप, नहीं ते अग्ग च साड़ के मार देंगा।

गोदी विच लै के बह जावांगी। मैनू वर है मैं ते सड़ना नहीं पर लाल सड़ जावेगा। इस तरह कीता गया, लकड़ां दा ढेर इकट्ठा कीता, लकड़ां दे ढेर ते

अपने सामने खड़ा करके कहन लगा, प्रहलाद आखिरी मौके राम नाम छड़, मेरा नाम जप, नहीं ते तलवार दे नाल तेरा सिर वट देंगा।

ए सुन के हरनाक्ष ने कहा, अच्छा मैं भी देखदा तेरी रखिया करन वाला मेरा की बिगाड़ लैंदा है।

लोग कहते हैं के प्रहलाद डोल गया, सत्ता थम देख के ते भगवान ने कीड़ी का रूप धार के थम से तुरना शुरू कर दिता। पर बाणी कहती के प्रहलाद डोलिया नहीं, क्योंकि भगत कदी डोलते नहीं।

भगवान ने हर नाकुश नु अपनी बाहों में फड़ लिया। कमरे की दलीज विच आके भगवान बैठ गए। एक लत कमरे के अंदर, एक लत कमरे के बाहर रखी। हर नाकुश नु अपने पट्टा ते भगवान

जिन्हें वर में मंगे सन सारे पूरे ने। परमेश्वर बड़ा ब्यंत है, गुरु हमेशा चेले कुल एक गुण वध रखदा है। की पता है चेला कदू हंकार विच आके ते मुकाबले ते बह जावे, ते जेड़ा चेला मुकाबले ते बैठे

पर मैं बड़ा हैरान होया इन्हां लोकां दी अकल ते। एक पास कहंदे ने गंगा मां है पापां दा नाश करदी, ते उसे गंगा मां विच ए मैनू

माता परमेश्वर ने उसे भी रखिया की थी। आखिर हार के सिकंदर लोधी बादशाह ने हिंदुस्तान का बादशाह जिदे अगे हिंदुस्तान दे लोग झुकदे ने डर के ए बादशाह उस बादशाह नु हाथ जोड़ के कबीर साहब दे चरणा दे मत्था टेकना पिया। उपदेश कीता है ऐ भाई उस परमेश्वर ते भरोसा रखो जेड़े अधर्मी ने एक वरी ते जुलम करदे ने पर समय नाल अधर्मिया दा नास हो जांदा है ते धर्मिया दी हमेशा परमेश्वर जित करांदा है। आओ भाई आपां इस परमेश्वर दा नाम जपिए ओदा सिमरन करिए ताकि आए हुए कष्ट दूर होन सुखां दी प्राप्ति होवे। आओ सारे उस परमेश्वर दा नाम जपिए नाम ना छड़िए जे नाम छड़िया ते दुखी रवांगे जे नाम जपांगे ते भगतां दी तरह सुखां दी प्राप्ति होवेगी।

सतगुर सिख की करे प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दया, सेवक दे दया दे। सेवक बन के कोई काम की कर जाए, अरदास करो, असत्य बलवंडे नू किस गल तो मार खा गए। जे वाहिगुरु स्वामी अपने आप नू सेवक वाला गुण हुंदा ते वाहिगुरु रूप गुरु अर्जन देव जी नू फिर ए बचन ते ना ना निकलदे, असी आ ते तुसी हो, हको सतनाम साडे करके तुहानू कोई पुछदा। ये बचन ता ही निकले ना कि अपने आप नू कोई सूझ लिया। कि साडे रबाबियां करके तुहाडी पूजा है, ते कहंदे अपने आप नू सेवक वाला गुण नहीं उस वेले ते रसना ते होर ओ मत दी होमे आ गई कि तुहाडे गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास जी नू भी किसे ने पुछना सी जे साडी रबाबी ना हो। महाराज कहंदे मैनू जो मर्जी कह लो गुरु नानक ने, पर मत च सेवक वाला गुण नहीं सी, दूजा सी। फिर क्या तीजी असर बाबा जी दे मुख चो ने, जाओ फिर कोड़ियो कोई मुंह नहीं लाएगा, आखो सतनाम। ओ भाई लगा परोपकारी विचोला बन के बख्शाया, इशारा लैना ए भी गुण जरूरी। वाहिगुरु नु स्वामी ते अपने आप नु सेवक, सेवक समझना, सेवक बन के रहन, ये तीजा गुण गुरु नानक देव महाराज जी ने तीसरा बचन पाई फिरने ते जोध दी चोली च पाया, वाहिगुरु नु स्वामी ते अपने आप नु सेवक समझना। छे बचन कीते, बाकी दे तीन अगले वीरवार महाराज जी सेवा लैन। एक बारी सारे माई भाई ये पंक्ति रल के पढ़िए, कोई रसना भी वांझी ना रहे जी।

खून खार शराबी हाथियों नाल लड़न दी समर्था रखन लगे। ये शक्ति सारी खंडे बाटे दे अमृत दी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह

लड़न दी समर्था रखन लग पे। ए गुरु जी ने मौजजा दिखाया, करिश्मा दिखाया कि खंडे बाटे दी पहल दे के ऐसी रूह फूक दिती कि मौत दा कोई डर नहीं, किसे जरवाने दा कोई डर नहीं।

सारा सरबंश ही कुर्बान कर दिता। चुली विच रत इकले अपने लालां दी ही नहीं पाई,

सिर तां कटवा दिता, पर उसका हाथ फड़िया सी जेड़ा, वो मुड़ के किसे भी हिंदू दे मत्थे तो तिलक ना पूंज सके। ताई फिर दसवें पातशाह ने अपनी बाणी विच भी आख्या सी ना,

बिना शस्त्र के संग नर भेट जानो, बिना शस्त्र के संग नर भेट जानो। गुरु गोबिंद सिंह का मुखवाक है, बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए होण ते शस्त्र ना होवे ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सिखो भेड़ बकरी तो वध तुसी कुछ नहीं। इसलिए तुहानू भेड़ बकरिया नहीं मैं बनाया, मैं तुहानू सिंह बनाया शेर। और शेर पता कौन हुंदा? शेर मैदान जंग विच उत्तो छाल मार के आउंदा, छाल मार के। मैं तुहानू दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई, 12,000 की। 4,000 ते आया इधरों फतेहपुरी वालों, ते 4,000 आया लाल किले वालों, ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया। ते जेड़े सी ना उन्हां दे खिलारे होए बंदूकां लैके वह भज गए, जेड़े दुष्टां दी फौज सी वह भज गई। ते दो चार साढ़े सिख बेचारे लागे कोतवाली, उन्हां नूं पिस्तौल ते उन्हां रात ही खोले सी ते डंडे इन्हां ने हत्थ च फड़ाते सी। वह डंडे लैके शीशगंज अंदर आन बड़े, असीं डाय सा कीर्तन करन बाबे नहीं साढ़े, राम जपो जी ऐसे ऐसे हां जी, ये राम ही डे सी जपण। उन्हें सिखा आके कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड़ो ते खंडे खड़काओ, 5 मिंट तुसी होर चुप कीते रहे ते तुहानू इन्होंने उत्ते ही आके फड़ के जीवंदे साड़ देना, धीआं तुहाडियां खिच के लै जाणियां, आ गोलकां गलकां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जानी। 5 मिंट केवल रहिंदे, जे कुछ कर सकते तो कर लो। यह साडे सिंह साहब बहादुर महाराज नूं नमस्कार बख्शण। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थापी दिती और इन्हां कोल शस्त्र सी जिहड़ा सानू बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दिता सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने प्यारे खालसा जी, मेरी बेनती सुन लो, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दी, इन्हों के अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया, 3-4 सिंह होर सी वह इन्हों के नाल हो गए और इन्होंने छाल मार के बबर शेर, जिमें बबर शेर के नजारे उथे मैं वेखे। गुरु गोबिंद सिंह की बाणी मैं पढ़ना हूं, पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे, तुरकच्छ तुरंग सपच बटो करकार कृपान कम पावेंगे, निक्षे जिम केर पर्वत ते ता सौर दिवाले पावेंगे, फल पाल पयाए संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। ओ मैं सुनिया एक तुक, निक्षे जिम केर पर्वत ते, केर का मतलब बब्बर शेर है, बब्बर शेर जो भुखा हों जो फिर पर्वत तो पवक मार के छाल मार के जो मैदान च आ उन्हें फिर जो ना वो पता की लिखे वो जो आप पढ़ते हैं गुरु नानक साहब का, हां जी, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चान होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। अगे की है सिंह बुकते, सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए, मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर पर हुआ। ए बाबे का छाल मार के शीशा के पौड़िया तो तलवार इतने फल ली, जकारे छड़ते पज पे पज के पांच सत पिछे बचारे मेरे वर्गे वह भी मगन मगन भजी आने। जब उन्हें देखा गुस्टा तो ये ते आ गए, तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली, वह 4 लार जो सी ना फतेहपुरी वाला भज उठा, 10-15 दम टुट गए, 50 सत्ता गोगे गोडे टुट गए, है जी। जब भज उठे नाले ऐ देखने वाले भजन तो फिर एक उठे खलो गए, इन्हें आख्या गल सुनो असी गुरु गोबिंद सिंह हां, ना असी बीबी मारते हां, ना असी बुढ़े मारते हां, ना असी बच्चे मारते हां, ना असी भजदे मारते, असी भजदे नहीं मारते, तुसी प्यो दे पुत्तो खड़ो जाओ नहीं तो असी इधर जाने जड़े आ आउंदे ने, उन्हां नूं छड्ड के लाल किले वाल भज उठे, वह पहला ही अगे भज उठे, है जी। 12,000 दुष्ट ए सारे बाबा जी ने, मैं तो कहना महाराज इन्होंने बढ़िया सुना के फिर मैं समाप्ति करनी है, क्योंकि तुम बहुत कुछ सुन रहे हो, 4 बजे दीवान लगा रज गए होवोगे। श्रवण करो गुरु गोबिंद सिंह की कहते, चंदनी बापू में हो

कन अस सर नहीं किल दिख हर रंग अस सर नहीं जय जय जग कारण श्रेष्ठ जय जय जग कारण

ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तेहु लोग परगासे देखत दर्स पटिक ब्रह्म पजते दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा आत्म

सब तो पहला रागां विच श्री राग जो के इस समय ही गाया जाता है। बाणी विच इसनु रागां विच सिरमोर मन्या है। रागां विच श्री राग है। ते शब्द भी श्री राग दा पहला शब्द है मोती ता मंदर उस रहे रतनी ता होए जड़ाव कस्तूर कुंगु अगर चंदन लीप आवे चाव मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। शब्द श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दा उच्चारण कीता होया। राहो दी तुक है हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देख्या अवर ना ही था। मैं एक बेनती करूंगा बच्चियां नू जरा इना दी गल्लां दी आवाज जे इधर आएगी ता मन खिंडदा है। फिर सब तो पहला जपताल 10 मात्रा ते अंतरा 10 मात्रे दा ही सुलफाक विच सुलफाक चलंत लय विच गाया जांदा है। अंतराय दा चलंत लय विच है ते अस्थाई ठा विच है।

એ વસ્તુ ઇસ વસ્તુનું કોઈ લેન એને બદલે છે ખાન ભૂખ દાદી મરદાનમાં કાહી ખીર ફિરદા રહ્યા और इस वस्तु के लैन वाला कोई ग्राहक नहीं हार के चरस के मरदाना खड़ा हो गया सोच रहा है मार्क ने उठ के एडी वड्डी दात बख्शी हर के लैन वाला ही कोई कौन लगेगा इसकी मरदाने में सामने तक आए तो अरायण बैठी जिसकी टोकरी गाजर के मूल्य मरदाने ने सोचा चलो मैं इस अरायण में दे देंगे कुछ खाण में दे देंगे के अपने पेट में चुपका दिए थे भुखना दुख दूर कर मरदाना अरैण के कोल आके खड़ो मुठ खोली देके आ माई आ लवेगी अरैण ने तकिया तो सिर फिर मैं इस पत्थर नु की कर पर ख्याल है तो पत्थर पर चमकदा बड़ा चलो ले लेनी है मेरे बच्चे पे खेल बच्चों की खुशी वास्ते माता पिता कितनी कोशिश कर बच्चों खिलौने लेके देते हैं पैसे देते हैं मिठाइयां देते हैं साढ़े बच्चे खुश हो बच्चों की खुशी वास्ते माता पिता की कितनी कुर्बानी अनो बच्चे हैं जो वड़े होके माता पिता की खुशी है माता पिता ने बच्चे की खुशी वास्ते कितनी बड़ी कालना कर पर वो बच्चा धन है जो माता पिता की करते बाबा आनंद सिंह जी महाराज पूर्ण महापुरुष अपनी पवित्र पावन रचना को वचन कर दे कि जिस बच्चे ने माता